नमस्ते सीताराम अस्सलाम वालेकुम स्वागतम सब कोई वेलकम टू द बॉलीवुड मिक्स आई एम समारू आई बी हियर फॉर द नेक्स्ट 3 hours or so playing for you the best of Bollywood music, more or less music from the 2000s until today, from the year 2000 until present day. Today you will